0: और मैं पाचू
1: इटी यूनियो और रेडियो यम ये करे वेर क्वारो
0: अलीशान हुई तुम
1: और मैं पाचू इटी यूनियो और रेडियो